0: शादी दिखाओगे या कव्वाली शुरू करोगे?
1: अरे कव्वाली सुनाता हूँ, सुनो छोकरे लोग, आज ऐसा जम के बजाओ कि मेरी जोरू का तंबू हदर जाए।
0: और बहनों ऐसा गाओ कि मेरे मियाँ का झोपड़ा उड़ जाए।
1: बजाओ रे।

संदकुने छुपा को संदकुने छुपा को अजी छिलको छिला को अजी हाँ घस को घसा।

पर तुझको लाखों हलालों की हराम कमाई दिया और तू मेरे को ताना दे रही, दो बादाम खिला के बोल रही, अरे बादाम नो लाते कते संदक।

0: हकीकत को अपनी आज मैं रोती बैठ को।
1: अरे पगली, अगर मैं तेरे को हंसाया तो फैमिली प्लानिंग वाले रोएंगे ना। तू जानती है तू कौन है?
0: क्या हूँ?
1: चिकनी मट्टी।

करेगी। सवा इसके नाम से मेरा नहीं काम ये आग का न पानी का, रोग ये जवानी का, जिसे लग जाता है उसे लग जाता है।

0: हिंदी मराठी सिनेसृष्टीतले खुमासदार किस्से, आठवणी आणि कलाकृतीच्या निर्मिती मागच्या न ऐकलेल्या रंजक कहाण्या या सगळ्याच गोष्टींना जाणून घेऊया. याद किया दिल ने कहा हो तुम या कार्यक्रमातनं सादर करते आहेत धनंजय कुलकर्णी. जरूर ऐका दर शुक्रवारी दुपारी 1:30 आणि पुनःप्रसारण दर सोमवारी रात्री 9:30 फक्त रेडिओ विश्वासवर.
1: श्री आर डी बर्मन जी हमेशा इंस्पिरेशन उनसे हमने लिया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए लाइफ में. कई इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किए जैसे 12 स्ट्रिंग गिटार, मादल, बेस गिटार. एक बार इस इंडस्ट्री में म्यूजिशियनों की स्ट्राइक हो गई थी, कोई म्यूजिशियन बजा नहीं रहा था.
2: किसी को गाना रिकॉर्ड करना था तो देखिए इंस्पिरेशन कैसे काम आती है. पंचम दा ने गाना रिकॉर्ड किया, वो गाना बहुत चला और उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें जो म्यूजिक के इंट्रोड्यूस हैं वो कुछ नहीं है, रिदम चल रहा है, एक आदाब जैसी वॉइस डायलॉग बोलती है, एक इंजन का इफेक्ट दे दिया है और गाना स्मूथली निकल गया. देखिए

हुई है जब से शादी, पड़ गए हैं हम तो मुश्किल में। कहें किससे तड़पती हैं हजारों हसरतें दिल में।

पहचाना? मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

शहनाई बजती रही, मैं थी, तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू?

दुनिया बिन बरखा पलखाए, पिछली बादल बदली बहके बुलबुल बिरहा गाए, पुए पुए बिरहा गाए, खोका खोका भाई जी खोका खोका। सुन सुन के संगीत सफेदा सांप सुने सरसाए, सांप सुने सरसाए, साए साए सुरमा सा संग समाए समय।

0: बहुत अच्छे मगर तुम रुक क्यों जाती हो?
1: मुझे जाने दो अशोक बाबू।
0: नाजो

0: सूरज भी कितना खूबसूरत लगता है।
1: हाँ, मगर इसके बाद अंधेरा छा जाएगा।
0: मैं वक्त के कदमों को रोक लूंगा।

जाने पागल मनवा काहे को घबराए। हिट हिट हिट की आए रे तबीयत हिट की किसकी जाए। डेरा का डेरा का डेरा कदा डेरा का डेरा का डेरा कदा डेरा का डेरा डेरा डेरा।

न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत बिटकी बिटकी जाए, डेरा का डेरा का डोर डोर, डेरा का डेरा का डोर डोर।

0: अब हमारे पंछी बन के हो गए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। हमारे पंछी बन के हो गए 9, 10, 11 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। रूप की गर्मी 16 बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए सभी सभी की खाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए सभी सभी की खाए।
1: दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दिला का दि